वो छोटी सी बिट्टिया गज भर की चुट्टिया, न कर गुस्सा मेरी गुड़िया। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू।